0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রে বা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবেন।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সবেরে 11 বজে আকাশবাণী পর মন কি বাত কার্যক্রম মে দেশ বিদেশ কে লোগো কে সাথ বিচার সাঝা করেঙ্গে। মাসিক রেডিও কার্যক্রম কি 134বীঁ কড়ি হোগি। কার্যক্রম কা প্রসারণ আকাশবাণী ওর দূরদর্শন কে সমুচে নেটওয়ার্ক, আকাশবাণী সমাচার ওয়েবসাইট ওর নিউজ অন AIR মোবাইল অ্যাপ পর প্রসারিত কিয়া জায়েগা। ইসকা সিধা প্রসারণ আকাশবাণী সমাচার, দূরদর্শন সমাচার, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় তথা সূচনা ওর প্রসারণ মন্ত্রালয় কে ইউটিউব চ্যানেলো পর ভি কিয়া জায়েগা। হিন্দি প্রসারণ কে তুরন্ত বাদ আকাশবাণী সে প্রাদেশিক ভাষাও মে ভি কার্যক্রম প্রসারিত কিয়া জায়েগা। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI

0: सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय

0: हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. Earlier, President of Myanmar yesterday arrived at Bodh Gaya in Bihar on a 5-day visit to India and prayed at Mahabodhi Temple. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing last evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. The government has temporarily exempted customs duties on cotton imports from the 1st of next month to 31st of October this year. The Ministry of Textiles in a notification said that the decision has been taken keeping the interests of cotton farmers and the entire cotton value chain at the forefront. It added that the measure implemented during the cotton off-season will ensure adequate availability of cotton for the textile industry, support MSMEs, moderate input costs and strengthen the competitiveness of Indian textiles. The ministry emphasized that the measure will safeguard the interests of the farmers and ensure market stability. Delhi Police Special Cell has arrested 8 accused working at the behest of Park ISI Mumbai Underworld Network. Addressing a press conference, Special CP of Delhi Police Special Cell Anil Shukla said that the accused were tasked to attack vital installations and security personnel in Delhi. He said that arms and explosives have been recovered from their possession. Mr. Shukla informed that the accused were operating under directions of cross-border handlers and they were arrested from Delhi, Maharashtra and Pune. Union Minister of Civil Aviation Ram Mohan Naidu has hailed the launching of Sky Cast system at IGI Airport in New Delhi. The minister said that advanced weather monitoring systems like Sky Cast can significantly improve flight operations during fog and turbulence. He added that as this technology expands to more airports across the country, it will strengthen safety and enhance the travel experience for passengers. Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu has announced summer vacations.

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये

0: भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लायन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा

0: प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष 2 में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि यह गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुख

से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं।

रविवार की सुबह 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी लेसन कार्यक्रम वाग्धारा। आज वाग्धारा के अंतर्गत हम बात करेंगे व्याकरण के विषय कारक की। लेकिन कारक का रुख करने से पहले आप सभी तक पहुंचा दूं एक आवश्यक सूचना। 136वीं डाक अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17 जून 2026 को पूर्वाहन 11:30 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा, जिसे की संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 सीआर एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या कि फिर adp@gcowb@gmail.com अथवा pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332120250, 300221-20612 अथवा 300221-20500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पाक अदालत की, जिसका आयोजन किया जाएगा 17 जून को दिन में 11:30 बजे। अब रुक करते हैं अपने कार्यक्रम में हिंदी लेसन कारक का। कारक ये शब्द ही बताता है कि यहां बात हो रही है कारण की। कारक और कारण दोनों एक। ये विषय बेहद मजेदार है अगर हम इसे मजे से सीखें। अगर मैं कहूं राम ने गेंद को बल्ले से मारा या श्याम ने गेंद को बल्ले से मारा, तो यहां कितनी बातें पता चलती हैं। पहली बात पता चल रही है राम, दूसरी गेंद और तीसरी बल्ला। यानी कि यहां जो संज्ञा की संख्या है वो कितनी है, राम, गेंद और बल्ला। तो कोई भी किसी भी वाक्य में जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो वहां क्या क्या होता है हमारे साथ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। किसी भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए जो सबसे अनिवार्य शर्त है वो है क्रिया का होना, यानी किसी काम का होना। तो ये जो क्रिया है उस क्रिया में एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध है और जो शब्द उन संबंधों को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं कारक। बड़ा उलझा हुआ सा लग रहा है ना, थोड़ा आसान करें। चलिए इसी वाक्य को फिर से दोहराते हैं। राम ने गेंद को बल्ले से मारा, क्या हुआ, मारने की क्रिया हुई। किसने मारा, राम ने। किसको मारा, गेंद से। और कैसे मारा, बल्ले से। राम ने गेंद को बल्ले से मारा। तो अब ये जो राम है, गेंद है और बल्ला है, इन तीनों का क्रिया से जो संबंध स्थापित होता है और जो शब्द बताते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए, राम मारा गया, ठीक। किसने मारा, राम ने। किसने काम किया, राम ने। क्या काम है ना, क्या काम किया राम ने, मारने का काम किया। किसको, गेंद को। तो ये जो तीनों सवाल के जवाब मिल रहे हैं, राम ने गेंद को बल्ले से, तो यहां पे कारक क्या है, ने, को और से। क्योंकि ये ने, को और से तीनों ही संबंध बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम, यहां पे हमारे पास सर्वनाम नहीं है, सिर्फ संज्ञा है, तो संज्ञा का संदर्भ बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं क्रिया से। तो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। हो गई ना बात आसान। चलिए एक बार फिर साथ में दोहराते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताएं उन्हें कारक कहते हैं। अब ये जो कारक हैं, इनकी संख्या भी होती होगी। हमने जो पहला शब्द, पहला वाक्य जो हमने जाना, उसमें हमने सिर्फ तीन कारकों के बारे में जाना, राम ने गेंद को बल्ले से। लेकिन इन कारकों की कुल संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। हम जब 8ों कारकों के नाम याद करेंगे तो साथ में उनके कारक चिन्ह, राम ने, ये जो ने है ये उस कारक का चिन्ह है। तो ऐसे ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक हैं। और इन 8 कारकों के जो चिन्ह हैं उनके साथ हम इन्हें याद कर लेंगे। बहुत आसान, बिल्कुल गाने की तरह। कर्ता ने
कर्म को।

कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ। एक बार फिर दोहरा लिया जाए। चलिए आप भी मेरे साथ दोहराइए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अब यहां दो से है, इन दोनों से को मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगी। अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ये जो कारक चिन्ह है उनकी मदद से हम कारकों को आसानी से पहचान सकते हैं। बेहद आसान है इन कारकों को पहचानना। तो चलिए पहले आप एक छोटा सा होमवर्क नोट कीजिए। जब आप इस होमवर्क को नोट कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पहचाना जाता है कारकों को। हमने कारक के नाम जाने, हमने कारक का चिन्ह जाना। अब लिखते हैं एक छोटी सी कहानी। चलिए लिखना शुरू कीजिए। अरे मित्र, अरे मित्र, राहुल ने अपनी बहन के लिए बाजार से एक खिलौना खरीदा। मैं फिर से दोहरा दूं। अरे मित्र, राहुल ने अपनी बहन के लिए बाजार से एक खिलौना खरीदा। उसने दुकानदार को पैसे हाथ से दिए। हो गया? यह खिलौना, अगली लाइन, यह खिलौना राहुल की बहन का था। बाद में खिलौना मेज पर रख दिया गया। पूरी कहानी को एक बार फिर से दोहरा दूं। अरे मित्र, राहुल ने अपनी बहन के लिए बाजार से एक खिलौना खरीदा। उसने दुकानदार को पैसे हाथ से दिए। यह खिलौना राहुल की बहन का था। बाद में खिलौना मेज पर रख दिया गया। इससे पहले हमने सभी कारकों के, 8 कारकों के नाम और उनके कारक चिन्ह को जाना था। कर्ता

अनेक कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ। अब हमने जो एक छोटी सी कहानी लिखी उस कहानी में इन सभी कारकों को ढूंढे। आप ले लीजिए अपनी पेन या पेंसिल और उसमें आपको जितने भी कारक चिन्ह नजर आ रहे हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, से, काके की, में, पर, अरे, ओ, हे, उन सबको अंडरलाइन कीजिए। तब तक हम सुनते हैं एक मीठा मीठा सा गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस गीत के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी में किस किस स्थान पर कौन कौन से कारक हैं और साथ ही में छोटे छोटे उदाहरण देकर एक बार फिर सभी कारकों को हम दोहराएंगे। चलिए सुन लेते हैं किताबों वाले इस गीत को।

तो हम बात कर रहे हैं आज कारक की, और कारक में मैंने आपको एक छोटी सी कहानी लिखवाई। अरे मित्र, राहुल ने अपनी बहन के लिए बाजार से एक खिलौना खरीदा। उसने दुकानदार को पैसे हाथ से दिए। यह खिलौना राहुल की बहन का था। बाद में खिलौना मेज पर रख दिया गया। अरे मित्र, बताइए कौन सा कारक। चलिए एक बार मैं दोहरा देती हूँ सभी कारक, फिर आप आसानी से बता पाएंगे। पहला कर्ता कारक, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राहुल ने गेंद फेंकी, जैसे कि हमारी कहानी में राहुल ने खिलौना खरीदा। अब दूसरा क्या है, कर्म कारक, खरीदने का जिस पर प्रभाव पड़े। राहुल ने मोहन को बुलाया, तो राहुल ने किसको खरीदा, खिलौने को खरीदा। ठीक, अब अगला करण कारक, करण यानी कि जिस साधन से कार्य किया जाए, जो कार्य करने का साधन है। जैसे रीना कलम से लिखती है, रीना कैसे लिखती है, कलम से लिखती है। तो राहुल ने खिलौना कहां से खरीदा, कहां से खरीदा, बाजार से। अब अगला आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए क्या है इसका चिन्ह, के लिए। तो राहुल ने किसके लिए खिलौना खरीदा, अपनी बहन के लिए। अपादान, अपादान यानी कि कुछ अलग होना, यहां भी से है लेकिन कुछ अलग होने के

अर्थ में, जैसे कि पेड़ से फल गिरा, राहुल घर से गया। तो उसने क्या किया, बाजार से ले लिया, यानी बाजार से वो जो खिलौना था वो अलग हो गया, अपादान कारक। उसके बाद बारी आती है संबंध कारक की। संबंध कारक क्या है, राहुल की बहन। बहन किसकी, राहुल की। तो ये हो गया संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में क्या होता है, जहां पे वस्तु रखी होती है, जिसे आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो अब यहां राहुल की बहन का खिलौना कहां रख दिया गया, अंत में, मेज पर। और संबोधन, हे अरे ओ, अरे मित्र इधर आओ। तो यहां पे क्या हो रहा है, अरे मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र को बता रहा है, अरे मित्र राहुल ने यानी कर्ता कारक, अपनी बहन के लिए यानी कि किसके लिए कार्य किया गया, संप्रदान कारक। बाजार से, अपादान कारक, एक खिलौना उसने दुकानदार को, कर्म कारक। पैसे से, पैसे कैसे दिए उसने, हाथ से, यानी कि करण कारक। और खिलौना किसका है, राहुल की बहन का, राहुल की बहन, यहां की किसका है, संबंध कारक। और बाद में खिलौना मेज पर रख दिया गया, यानी कि अधिकरण कारक, एक कहानी में सभी कारक। तो चलिए एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ने को से के लिए, से का के में पर, हे अरे ओ, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओ। आज हमने वाग्धारा के अंतर्गत क्या पढ़ा, कारक। और आज के लिए हमारा ये हिंदी लेसन कार्यक्रम बस यहीं तक। अगले रविवार फिर एक नए विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम, अगली प्रस्तुति इस गीत के उस पार। सुनते रहें, साथ बने रहें।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। समय हो चुका है हिंदी कार्यक्रम रसधारा का। रसधारा जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए भाव प्रधान गीत और बातें। तो चलिए कार्यक्रम रसधारा की शुरुआत करते हैं एक बेहद सुरीले गीत के साथ। गीत के उस पार बातें होंगी आज के विषय की। और हमारा जो आज का विषय है, आज का दिन यानी कि 31 मई के दिन को हम मनाते हैं नो टोबैको डे के रूप में। तो आज का हमारा विषय है नशा मुक्ति अभियान और हमारा दायित्व। इस नशा मुक्ति अभियान में किस तरह हम अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा और गीत। कार्यक्रम रसधारा।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रविवार 31 मई यानी कि आज का दिन। जी हाँ, आज के दिन को हम मनाते हैं नो टोबैको डे के रूप में। और आज कार्यक्रम रसधारा में हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान और हमारे दायित्व की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी किसी से पूछा है, कभी अपने किसी मित्र, अपने परिचित जो नशे के लती हैं, उनसे बात की है, तुम्हें ये लत कैसे लगी, क्या तुम इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानते हो? हमारे समाज में नशे की लत बहुत आसानी से लग जाती है, लोग लगा देते हैं लेकिन कभी भी उस पर खुलकर बात नहीं करते, दुष्परिणामों को झेलते हैं, उनसे जूझते हैं लेकिन उनसे निकलने के लिए खुद से एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। और इसमें जरूरत होती है हमारे अपनों की। हमारा एक दायित्व बनता है बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करना, क्योंकि कभी भी हमें ये पता नहीं लग पाता कि मेरा बच्चा उस नशे का लती कब बन गया। हम तक तो खबर तब पहुंचती है जब मेरे बच्चे को वो लत लग चुकी होती है। तो क्यों ना किसी लत के लग जाने से पहले ही हम कर लें उससे बात, कर दें उसे सजग

सचेत। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना लोग कम पसंद करते हैं, खुलकर बातें नहीं होती हैं, लेकिन किसी भी अभियान का पहला कदम बातचीत होता है। तो सबसे पहले तो हम अपनी शुरुआत ये करें कि हम अपनों से, अपने अपनों से बातचीत करना शुरू करें। नशे की आदत को, नशीले पदार्थों को प्यार के नशे से मिटाया जा सकता है।

घड़ी की सुइयों का इशारा, कार्यक्रम रसधारा अपने आखिरी छोर, अपने आखिरी मोड़ तक। आज हम बात कर रहे थे नशा मुक्ति अभियान और हमारे दायित्व की। नशा कभी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खाता, वह पूरे परिवार की खुशियों को निगल जाता है, वह सपनों को तोड़ता है, रिश्तों को कमजोर बनाता है और समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देता है। तो जितना हो सके नशे से दूर रहें, खुद भी और अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने अपनों को भी नशे से दूर करने की कोशिश करें। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको उदित नारायण की आवाज के साथ, आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इस गीत के उस पार रुख करेंगे दिल्ली केंद्र का समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मिट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे।
0: ए माती रे मोरो मोते,
1: मोरो मोते।
0: माती के,
1: माती के
0: सुमिलो,
1: सुमिलो।
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी।
0: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दो बार आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार। लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा,
1: आहा, आहा।
0: फिर मातीर बुकुत,
1: मातीर बुकुत।
0: हाँ, मातीर बुकुत। मोनोर मालोती,
1: मालोती
0: बूटोलो,
1: बूटोलो।
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, ए माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतर है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे।
0: खुरोर खुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी,

0: हो गया ना
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी हाँ।
0: हुंदौर खुदीनौर नौतून दृष्टि ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि दृष्टि कौनो ना हुआ आगे ना
1: जी।
0: अच्छा ठीक है गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

ऐसे कोनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना है एक बार, और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना खून दौर से लो,

0: 있으면 어라니까.
1: अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना एक दो तीन चार

मुस्कुराना भी हमें संदेश भेजते हैं। मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन भी हमें संदेश भेजते हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का भी संदेश हम तक पहुंचा है। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संदेश हम तक पहुंचा है और इनकी पसंद का ये गीत।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85

0: लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
11: नमस्कार सर। नमस्कार।
12: नमस्कार सर।
10: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
11: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
10: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
13: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ
11: और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैं

0: 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूं जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूं मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूं। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती ये मेडल कहाँ जीता ये फोटो कब किया है तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया मैंने ये नेशनल मेडल जीता ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे धूप में भागते थे सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ दो दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था क्या जीत थी क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर मैं गुरिंदर मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ मैं सही चूज किया क्योंकि हर बार आप नहीं जीते कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं एक दिन बुरा चला गया एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती सपने देखना नहीं छोड़ते तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना इस पे आगे बढ़ना है देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहां अपकमिंग कॉम्पिटिशन

0: कंडीशन में हम OHF परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
0: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है। बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही, उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
2: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
2: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है।

भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सत्य

प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक,

इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे।

0: क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवंत देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। समय हो चुका है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि का। सुरभि की पहली कड़ी चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। 31 मई को मनाया जाता है ये दिन, और इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के

सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1987 में की गई। आज ये दिन पूरे विश्व में जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू का सेवन कई रूप में लोग करते हैं, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, खैनी, जर्दा और न जाने क्या क्या, लेकिन जो हम डायरेक्ट तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, यानी एक्टिवली जो हम इनटेक कर रहे हैं, उसके साथ साथ परोक्ष रूप से भी हम लोगों को तंबाकू के हानि से प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि पैसिव स्मोकिंग, पैसिव टोबैको टेकिंग भी साथ साथ चल रही है। जितना नुकसान किसी के सिगरेट पीने से है, उतना ही नुकसान आसपास के वातावरण में रह रहे लोगों को धुएं से है। इन्हीं बातों के प्रति जागरूकता फैलाना आज के दिन का विशेष कार्य है। तो आप भी प्रण लें कि न स्वयं तंबाकू के नजदीक जाएंगे और न ही अपने अपनों को जाने देंगे। वे लोग जो ग्रसित हैं इस समस्या से, उन्हें भी निकालने की कोशिश करेंगे। तंबाकू छोड़ें, स्वास्थ्य अपनाएं और जीवन को सुरक्षित बनाएं। चर्चा है कि अंतर्गत आज हमने बात की विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत के उस पार रुक करेंगे कार्यक्रम सुरभि की अगली कड़ी पहल का।

0: Akashwadi at 90.
1: बेमिसाल 90 सालों का सफर पूरा कर चुका है आकाशवाणी और उसी आकाशवाणी के संचेता चैनल से जुड़े हुए हैं आप, जहां चल रहा है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि और सुरभि की अगली कड़ी, अगला पायदान, पहल। पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। भारत सरकार द्वारा तंबाकू के सेवन को नियंत्रित करने तथा इसके दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट अस्तित्व में आया। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाना, उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करना शामिल किया गया। वर्ष 2003 में लागू किया गया इस एक्ट को 18 मई के दिन, और 1 मई 2004 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। इसके मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत आता है तंबाकू उत्पादों के उपयोग को कम करना, धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान को से जनता की रक्षा करना, बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार पर नियंत्रण करना। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों में अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पुस्तकालय, रेस्टोरेंट आदि शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर भी रोक लगाई, और इसका उद्देश्य है लोगों, विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन के लिए आकर्षित होने से बचाना। धारा 6 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और चित्रात्मक चेतावनी छापना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को तंबाकू के खतरों के प्रति जागरूक करना है। तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों को कम करने में सहायता मिली है इस एक्ट के माध्यम से। सार्वजनिक स्थानों पर निष्क्रिय धूम्रपान से लोगों को सुरक्षा मिली है। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 भारत में तंबाकू नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कानून है। यह केवल धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि लोगों के इसके गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी बनाता है। यदि इस कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया जाए तो तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। पहल के अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 की। एक बार फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं आकाशवाणी के 90 सालों को।

अपनी उसी आकाशवाणी के संचयिता चैनल पर, जिसे आपने ट्यून किया है 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, सुन रहे थे आप कार्यक्रम सुरभि। दीजिए आज्ञा कार्यक्रम सुरभि से अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को, छोड़े चलूंगी आपको मुकेश की आवाज के साथ अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार।

0: Every year, WHO picks a theme for World No Tobacco Day, like a mission for the year. This year's theme is Clean Air, Clear Choices. Every kid deserves to run, laugh and play without breathing smoke. Park, schools, homes, all should be smoke-free. When you know the facts, it's easier to make smart, healthy choices. No tricks, no confusion, just clear information, clear power. Calling all children. This program was broadcast from the studios of Akashvani, Kolkata. Stay tuned for the news to be released.
1: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Munish Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के

0: पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
1: Gnyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurn khoj hui hai. Yahan 3 durlabh ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी

0: सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है।

0: लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन

0: ट्विन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी

0: मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएब अल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন বিলম্বিত তিন তালে তবলা বাজিয়ে শোনাবেন শিল্পী বিক্রম ঘোষ। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করবেন সনাতন গোস্বামী।

0: আকাশবাণী কলকাতা স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:52। শুরু হলো দ্বিতীয় অধিবেশন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत ने भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में

स्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं रेडियो सेट पर, साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप पर, डीटीएच पर, और आपके डिवाइस के सर्च इंजन पर यानी गूगल पर जाकर अगर आप हमारे चैनल का नाम टाइप करते हैं यानी लिखते हैं आकाशवाणी कोलकाता संचयिता तो सीधे तौर पर इस प्रसारण के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित हमारी ये विशेष प्रस्तुति उर्वशी।

उर्वशी में आज हम आपको सुनवाएंगे पंखुड़ी, और पंखुड़ी के अंतर्गत आप सुनेंगे आज मेरी पसंद के कुछ बेहतरीन खूबसूरत हिंदी फिल्मी नगमे। तो सबसे पहले आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज़ में सागर फिल्म का ये गीत पेश करना चाहूँगी, जिसे सुरों से सजाया राहुल देव बर्मन ने और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। सुनते रहें, साथ रहें, आकाशवाणी कोलकाता का ये सच्चाईता चैनल है, उर्वशी सुन रहे हैं आप, और आज है पंखुड़ी के अंतर्गत खूबसूरत हिंदी फिल्मी गाने।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचेता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये प्रसारण और ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर रविवार की शाम की तरह आज भी पंखुड़ी, जहां हम आपको सुनवाते कुछ बेहतरीन खूबसूरत फिल्मी गाने। और सागर का एक गीत हमने सुना कार्यक्रम के एकदम शुरुआत में, पहला गीत रहा वो इस कार्यक्रम का। और दूसरे गीत की तरफ अब हम रुख करेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सबके लिए। हरजाई फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मैं लेकर आई हूँ और इस गीत को निदा फाजली ने लिखा था और राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया था। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, सुनते रहें कार्यक्रम पंखुड़ी उर्वशी के अंतर्गत। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है।

एक विशेष सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को पूर्वान 11:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpg@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212062 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द अवश्य लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों और नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित महिलाओं के लिए हमारी ये खास पेशकश, जिसे हम पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। हर रविवार हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:20 पर। स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय 5:40:32 और आप सबके लिए ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम जवानी दीवानी। और अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीतकार और गीतकार की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राहुल देव बर्मन ने इस फिल्म में संगीत दिया था और ये गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ ओनली ऑन आकाशवाणी कोलकाता संचयिता।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत पंखुड़ी, और हमने द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आवाज सुनी आशा भोसले और किशोर कुमार की। और चलते चलते कार्यक्रम का आज का ये आखिरी गीत आपकी नजर करना चाहूंगी। समय अब हमारे बीच शेष नहीं, तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये युगल गीत आपको मैं सुनवाना चाहूंगी। फिल्म का नाम आ गले लग जा। साहिल लुधियानवी ने गीत को लिखा था, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। आप लोग बने रहें आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर।

0: clock right now is few seconds to 6 p.m. And now please stand by for the news from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री आतपात् आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिकपेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च IPL क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिं दक्षिणपूर्व एशियादेशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद रक्षणोपायान् स्वीकृत्यैव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्यां प्रतियोगितायां प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागं गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायां धावन प्रतियोगितायां विजेतृभ्यां गुरिन्दर वीर सिंह तथा अनिमेश कुजूर चेत्येताभ्यां सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशस्य प्रत्येकं जनेषु जिज्ञासां जनयति। तेनोक्तं यत् खगोलशास्त्रं देशे शीघ्रं लोकप्रियं भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेन उक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेन्स अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्री मोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।

0: प्लीज स्टैंड बाय फॉर द न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सात

0: 20वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुँचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर यह प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, न केवल आपके रेडियो सेट पर बल्कि न्यूज ऑन एयर ऐप पर, साथ ही डीटीएच पर और आपके डिवाइस के सर्च इंजन पर जाकर अगर आप हमारे चैनल का नाम टाइप करते हैं तो सीधे तौर पर इस प्रसारण के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रस्तुत है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण।

दर्पण में आज सबसे पहले प्रस्तुत है एक नज़र, और एक नज़र में आज हम बात करेंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। तंबाकू और सिगरेट का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में फेफड़ों के कैंसर या सांस से जुड़ी बीमारियों की तस्वीर सामने आती है। लेकिन ये आदत सिर्फ फेफड़ों के लिए खतरनाक नहीं है, इसका आपके दिमाग, दिल, किडनी, लिवर और आंखों पर भी असर होता है। सिगरेट का धुआं शरीर में पहुंचकर खून के जरिए हर अंग तक पहुंचता है और नुकसान पहुंचाता है। इन्हीं खतरों को लेकर लोगों को सावधान करने और तंबाकू सिगरेट छोड़ने के फायदों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारी से जागरूक कराना होता है। धूम्रपान आज दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का एक प्रमुख कारण है, और ये न केवल फेफड़ों, हृदय और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि परिवार और समाज पर भी एक बेहद नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या आप जानते हैं वर्तमान में अधिकांश बीमारियों की वजह तंबाकू है? तंबाकू से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे कोई बीमारी होने का खतरा जो है वो दोगुना, तिगुना नहीं बल्कि चौगुना या उससे ज्यादा भी हो सकता है। नियमित रूप से तंबाकू सेवन करने से सांस का फूलना, टीबी, माइग्रेन, सर दर्द, ब्रोंकाइटिस, एसिडिटी और फॉलेज, इसके साथ ही असमय बालों का झड़ना और प्रीमच्योर ग्रेइंग, इन सभी समस्याओं के साथ साथ आंखों में मोतियाबिंद की परेशानी हो सकती है और हार्ट की बीमारी हो सकती है, पेट में फोड़े हो सकते हैं। मतलब न जाने कितनी ही समस्याओं से आपकी जो जिंदगी है वो घिर सकती है अगर आप तंबाकू लेते हैं। तो ये जो दिन है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये दिन वर्तमान में और आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू सेवन के खतरों से बचाने की जो एकदम इमीडिएट जरूरत है उस पर रोशनी डालता है, जिसमें धूम्रपान और धुआं रहित दोनों रूप शामिल हैं, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति ये हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और निवारक उपायों, व्यवहार में बदलाव और जो अवेयरनेस है हमारी, उसके जरिए गैर संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय जो प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कोशिशें हैं उनका समर्थन करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे युवाओं को शिक्षित करने, जो हितधारक हैं उनको शामिल करने और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी COTPA 2003, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP और तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुसार तंबाकू नियंत्रण कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करने का एक अवसर है। आपको बताना चाहूंगी कि इस साल की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है अनमास्किंग द अपील,

countering nicotine and tobacco addiction. तो आइए हम सब मिलकर इस कॉज के प्रति प्रतिबद्ध हों, हम सब मिलकर ये बीड़ा उठाएं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो स्वजन हैं, हमारे मित्र हैं, उनमें हम जागरूकता फैलाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो तंबाकू लेना छोड़ दें और न केवल उनके जीवन में सुधार हो बल्कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी जिस तरह से पासिव स्मोकिंग या जिस तरह की आप जो सीधे तौर पर तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा वगैरह लेते हैं, इन सब चीज़ों से भी वो अपने आप को बचाएं और एक स्वस्थ जीवन जीने की शुरुआत करें। दर्पण में हम बात कर रहे थे एक नजर के अंतर्गत वर्ल्ड नो टोबैको डे, और अब समय हो चला है कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर पहुंचने का। लेकिन उससे पहले चलिए खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। और आपको बता दूं कि आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। घड़ी में इस वक्त समय एकदम सही समय 7:37 और 33 सेकेंड्स। आप सबके लिए खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये रहा, और ये गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दो रास्ते से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था इस गीत को और आनंद बख्शी ने लिखा था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सबके लिए, सुनते रहें, साथ रहें। आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है।

बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक जारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। निगरे क्या हुए कि लोगों पर अपना साया भी अब तो भारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, सांस जो चल रही है आ रही है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है। हिजर हो या विसाल हो, कुछ हो, हम है और उसकी यादगारी है। एक महक समते दिल से आई थी, एक महक समते दिल से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है। हादसों का हिसाब है अपना, हादसों का हिसाब है अपना, वरना हर आन सबकी बारी है। खुश रहे तू जिंदगी अपनी, खुश रहे तू की जिंदगी अपनी, उम्र भर की उम्मीदवारी है। जॉन एलिया की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का जो दूसरा भाग है उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं दैनिक हिंदी पत्र का कार्यक्रम दर्पण, और दर्पण में इस दूसरे भाग में ख्यालों को यूं जरा सजाए जिसका नाम है आज हम बातें करेंगे जुनून की। सच में एक ऐसी दीवानगी जो आपको अपने काबू में कर ले और बस आपको आगे बढ़ाती रहे अपनी मंजिल की तरफ, वही है जुनून। एक ऐसी चाहत जो आपके बस में नहीं, लेकिन जुनून अगर सर पर हो किसी चीज को लेकर, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा जज्बा जो आपको आगे बढ़ाए, आपको हौसला दे, वो यकीनन जिंदगी के लिए, आपके दिल के लिए अच्छा ही होता है। और मोहब्बत का जुनून जो है वो भी तो कभी कभी सर चढ़ कर बोलता है। आप पाना चाहते हैं किसी इंसान को शिद्दत से और कोशिश करते हैं उस तक पहुंचने की, हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने आप को उसके काबिल बनाने की। तो इसमें होता ये है कि

ये जो प्रोसेस है इसमें आप खुद भी बढ़ते हैं आगे, अपने आप को निखार लेते हैं, संवार लेते हैं, और इस तरह ये जुनून न केवल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है बल्कि आपके अंदर ढेर सारी वो चीज़ें, वो जज्बात, वो खूबियाँ भी जगाता है जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो जुनून हमेशा हमेशा अच्छा ही होता है, शायद उसको देखने का हमारा नज़रिया बदल जाए या उसको हम दूसरे ढंग से एड्रेस करें, लेकिन थोड़ी सी दीवानगी कुछ पाने की, इस तरह की आपकी जो ललक है वो अगर है आपके अंदर, तो इस तरह का जो जुनून है वो सच में आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिक्र करना चाहूँगी राज खोसला साहब का भी। आज है निर्माता निर्देशक राज खोसला की जयंती, और कितनी बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें दी हैं तोहफे में, एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। उन्हीं की एक फिल्म दो रास्ते का मैंने आपको गीत सुनवाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एक और गीत मुझे याद आ रहा है, वो कौन थी फिल्म का गीत जो एक कालजयी गीत है, अमर गीत है, जो शायद कभी भी पुराना ना हो, कभी भी इस गाने के जो अल्फाज हैं, जो धुन है, वो फीके ना पड़े। ऐसा ही गीत राज खोसला की फिल्म वो कौन थी से लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं। और आपको बताऊं कि संगीतकार थे इस गीत के, हम सब जानते हैं, मदन मोहन साहब, और मदन मोहन के साथ राजा मेहंदी अली खान ने कोलैबोरेट किया था इस गाने के लिए। गीतकार राजा मेहंदी अली खान की कलम से निकला ये खूबसूरत सा गीत। आप सबकी नज़र करती हूँ, सुन रहे हैं आप संचयिता पर दर्पण।

जारी है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण और दर्पण में इस दूसरे भाग में हम बात कर रहे हैं जुनून की, जिसका अर्थ है दीवानगी या किसी काम के प्रति, किसी चीज के प्रति हद से ज्यादा लगन या धुन का होना। और प्रेम में अक्सर हम जुनून की बात करते हैं, जिस तरह से हम किसी के साथ इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, लगता है कि सारा का सारा जो समय है उसी के साथ बिताया जाए। और कई लोगों की ज़िंदगी में ये जो बात है ये मुकम्मल हो जाती है और मिलता है जन्मों का साथ। लेकिन कभी कभी यूं भी हो सकता है कि बीच में कुछ दरारें पड़ जाएं, लेकिन फिर वही जुनून जो है वो आपको साथ में ले आने का भी काम करता है। चलिए एक ऐसा गीत सुना जाए जहाँ पर कहा जा रहा है कि अब साथ जब नहीं है तो याद जो है वो भरपूर आएगी, और इस याद से फिर कैसे बचा जाए ये संभव नहीं है। सच में आप किसी को अगर चाहते हैं वो आपके साथ में नहीं है और आप मिस करते हैं उस इंसान को, तो याद जो है वो तो बार बार उस इंसान की आपको आएगी ही। सनी फिल्म से राहुल देव बर्मन के संगीत में आनंद बख्शी का लिखा गया गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में आप सबके लिए, केवल और केवल एफएम तो नहीं, हमारे साथ अभी आप जुड़े हुए हैं हमारे खूबसूरत से चैनल, प्राइमरी चैनल संचयिता पर, आकाशवाणी कोलकाता संचयिता की ये प्रस्तुति कार्यक्रम दर्पण सुन रहे हैं आप चैनिका को।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अब तक आप सुन रहे थे दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण और घड़ी में इस वक्त समय हो चला है 8 बजने में केवल 30 सेकंड्स शेष हैं, तो चलिए अगले कार्यक्रम की घोषणा की प्रतीक्षा करते हैं।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চিতা প্রচার তরঙ্গে। এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে সর ফিরোজি। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित

0: करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत

0: दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhom town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया।

0: सात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
1: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
2: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
3: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना,
2: छोड़ दो। देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
0: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
4: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
4: जैसा कि आप सब जानते हैं मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
0: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
1: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
4: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं

0: ऐसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे, और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बात चीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत रामचंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखीं, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सुरी। जटिल कर्म पथ पर थर थर थर कांप लगे रुकने पग। जटिल कर्म

0: सासुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: यू आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम अनुगूंज बेस्ड ऑन द आर्काइवल इनपुट्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।

0: टप गांव में दोपहर को हुए इस विस्फोट में तकरीबन 70 लोग घायल हुए हैं। यह क्षेत्र चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह इलाका सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा नियंत्रित है और यह गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। म्यांमार से बड़े पैमाने पर हुए पलायन के लगभग एक दशक बाद बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए चल रही सहायता एक नाजुक दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नाजुक चरण बताया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अनुदान में कमी आई है, शिविरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: 2026 की संयुक्त सहायता योजना प्रस्तुत करते हुए संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझेदारों ने लगभग 15 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों और मेजबान समुदायों के सदस्यों की सहायता के लिए 71 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि की अपील की है। बांग्लादेश में आयोग के प्रतिनिधि इवो फ्रीजन ने कहा कि म्यांमार में निरंतर अस्थिरता और शिविरों की बिगड़ती स्थिति ने मानवीय स्थिति को और भी नाजुक बना दिया है। 13 लाख राज्यविहीन रोहिंग्या अब भी बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनकी म्यांमार लौटने की संभावनाएं बहुत कम है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष केवल 30% शरणार्थी परिवारों ने नकद आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित की, जबकि 35% परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और वे पूरी तरह से मानवीय सहायता पर निर्भर थे। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने, साझा सैन्य अभियान चलाने तथा विकास और उत्पादन कार्य मिलकर करने के अवसरों सहित रक्षा उद्योग में सहयोग पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार ये संवाद द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने, राजनीतिक सहयोग बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। राजधानी पेरिस में परिवहन सेवाएं प्रभावित होने के कारण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है। हिंसा के आरोप में 780 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस रिंग रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसे दंगाइयों ने रात भर अवरुद्ध करने की कोशिश की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह भी किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान इस शर्त पर सहमत हो गया है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सैन्य अभियानों के कारण ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मूज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। यूक्रेन ने कल रात भर रूसी ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए। उसने रूस के उन दावों का खंडन किया कि किसी यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस के उन दावों का खंडन किया है कि उसके किसी ड्रोन ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि कांगो में इबोला वायरस से संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी शहर बुनिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुनिया में एक नए इबोला उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों में प्रकोप से जुड़े 906 संदिग्ध मामले और 223 संदिग्ध मौतें दर्ज की गयी। पड़ोसी देश युगांडा में अधिकारियों ने 9 मामलों और 1 मौत की पुष्टि की है। इससे पहले डॉक्टर्स विदाउट

0: डॉक्टर्स संगठन ने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य सेवा समन्वय में सुधार और अतिरिक्त सहायता के बावजूद वायरस तेजी से फैल रहा है। संगठन ने परीक्षणों के तत्काल विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों की त्वरित तैनाती और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की निर्बाध उपलब्धता पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
1: चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आज एक अवैध खनन स्थल के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह घटना युन्नान प्रांत के बाइवो गांव में हुई। खबरों के अनुसार जब यह हादसा हुआ तब 6 लोग अंदर थे। बचाव दल ने सभी लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बाद में 5 घायल लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। चीन में मई माह में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर रही। सूचकांक अप्रैल के 50.3 से गिरकर 50 पर आ गया, जो वृद्धि न होने का संकेतक है। ये स्थिति नई खरीदारी में कमी, उत्पादन में गिरावट, मुद्रा बाजार में मंदी, घरेलू मांग में कमी और निर्यात में गिरावट के कारण आई है। वैश्विक व्यापार में गतिरोध से भी स्थिति जटिल हुई है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खेल मंत्री ने कहा कि इस जीत के साथ 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने इसे भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। म्यांमार में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच झड़प, सैकड़ों प्रशंसक गिरफ्तार। और बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Reshma Tiwari with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold discussions with Myanmar President Aung Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. More than 45 people killed in a blast at mining explosive storage site in Myanmar. Hundreds of football fans arrested in France after violent clashes with police after victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in Champions League. And in badminton, Indian pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Aung Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kangtup in Namkham Township. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Tang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. A rescue worker who reached the site said that 46 bodies, including those of 6 children, were recovered by evening and taken for cremation. Rescue operation is underway. Defense Minister Rajnath Singh and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक

0: मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi, MVA, had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার এবং 1008 কিলোহার্টজে। শুরু হচ্ছে হিন্দি ছায়াছবির গান। হিন্দি ছায়াছবির গানে আজকে প্রথম গানটি শুনবেন কসমে বাদে এই ছায়াছবি থেকে। আশা ভোঁসলে, কিশোর কুমার এবং অমিত কুমার শিল্পীদের কণ্ঠে এই গানটি।